0: जसकीरत जगले
1: जेतिस नजर न आवई ता बात न पुछे के
0: कीट अंदर कीट कर दोषी दोष धरे
1: नानक निर्गुण गुण करे गुणवंत आ गुण दे
0: देहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे
1: सुने सिद्ध पीर स्वरनाथ सुने धरत तबल आकाश
0: सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सके काल
1: नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास
0: सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख सलाहन मंद
1: सुने जोग जोगत तन भेद सुने शास्त्र सिमरत वेद
0: नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास
1: सुने सत संतोख ज्ञान सुने अठ सठ का इसनान
0: सुने पढ़ पढ़ पावे मान सुने लागे सहज ध्यान
1: नानक भगतां सदा विगास सुने दुख पाप का नास
0: सुने सरा गुणा

0: एक बार
1: जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार।
0: असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम कोर,
1: असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ त्याग माहे,
0: असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कुड़े फेराहे,
1: असंख मलेश

0: असांख नाव असांख थाव अगम अगम असांख लो
1: असांख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गहा
0: अखरी लेखन बोलन बाण अखरा सरसन जोग बखान
1: जिन्हें लिखे तिसर नाहे जे फरमाए

0: गाले
1: गंगा बा भंगत मत पार गुण गान उदार
0: मन कर प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत
1: अलस्य कर्म दृश्य तरम सर्व अपर्ण अंडन बड
0: चाचरी शांत वै प्रसाद
1: गोविंदे मुकंदे उदारि अपारी
0: हरियम करियम दे नामे अकामे पुचंग पड़ियात शत
1: चक्र करता जत चक्र हरता जत चक्र दाने जत चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पार्थी चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
1: चत चक्र पासे चत चक्र वासे चत चक्र माने।

मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माई असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाई मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माई संत सहाई प्रेम के हों तिन कै लागा पाए विन प्रभ क्यों

वेद पुराण सिमर सुधाखर किन्ने राम नाम की आखर किन कायक जस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै काकी एकै दर्श तुहारो नानकुण संग मोहे उधारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नामो भक्त जना कै मन बिश्राम रहाओ।

प्रभु के सिमरन होए सो भला, प्रभु के सिमरन सो फल फलाओ, सी सिमर जिने आप समराई, नानक ताकै लागू पाई। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरे मूचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझै, प्रभु के सिमरन सबकी सूझै, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु के सिमरन मन कीमल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दर्शन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते, प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमौत ताजी, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजी, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्ला, नानक जन की मंगर वाला, प्रभु को सिमरै से परे उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिने आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिने अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु के सिमरन कबूना चूरे, प्रभु के सिमरन हर गुण बानी, प्रभु के सिमरन सहज सुमानी, प्रभु के सिमरन निश्चल आसन, प्रभु के सिमरन कमल बिगासन, प्रभु के सिमरन आनंद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत ना पार, सिमरे से जन जन को प्रभ मैया, नानक तिन जन शरणी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाई, हर सिमरन लग भी दुपाई।

और मैया के गुण चेत प्राणी कौन मूलते कम दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया कर भगन मैं जिने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन पूजन सुख सूद बिरद प्याओ प्रसाद सैन मुख्यो प्याओ बैठ खाओ दैन एहो निर्गुण गुण कशु ना बूझै बख्श लियो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संगसै जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पौन पव कमला जे प्रसाद भोगे सब रसा सकल समग्री संग सत बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्याग अवर संगरचना ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे नानक काढ़ लियो प्रभ आपे आदंत जो राखण हार तिस्यों प्रीत न करै गवार।

कौडी संग रचै सा छोड़ छूट संग बचै जो शरण सुवस्त्र कर मन जो वन सुदूर प्राण छोड़ जाय तिसका शर्म करै संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै तोय गर्त प्रीत बसम संग होय अंधकूप में पतत बिकराल नानक काल लियो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पिचारा करै दिन रात। बाहर पे खंतर मल माया शबशनाए कश करै छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान।

कहाँ बुझारत बुझे डोरा, निस्कैय तो समझे भोरा, कहाँ बिसन पद गावै गुंग, जतन करे तो पीसर भंग, कै पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तुआ सुगम नाऊ। करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै, संग सुहाई सुहा वै ना चीत, जो बैराज तां स्यों प्रीत, बलुआ कै ग्रह प्रीतर बसै, अणदकेल माया रंग रसै। दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत, काल ना आवै मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बेकार महालोभ त्रोह, आऊं जुगत बयान ने कई जन्म, नानक रा

दस बसूले पाछे पावै एक बस कारण बे खोट गवावै एक बीना दे दस बी हिर ले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकर से नाही।

सात जना की अचर्ज कथाष्टपदी साधक संग मुख उजल होत साध संग मल सलीख होत साधक संग मिटे बमान साधक संग प्रगटे सो ज्ञान साधक संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब उतन बेरा साधक संग पाए नाम रतन साध के संगे के ऊपर जतन साध की मामा बरने कौन प्राणी नानक साध की जोबा प्रमाय समानी साध के संग गोचर मिलाय साध के संग सदा प्रफुलाय साध के संग आवे बस पंचा साध संग अम तरस पंचा साध संग हो सब गिरे न साध संग नोर बैन साध संग नकतूं तावे साध संग सित मन पावे साध संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सा संग दुश्मन समीत साधु संग मा अपनीत सा संग किस नहीं बैर साधक संग ना बिगा पैर साधक संग नाई को मंदा सा संग जाने पर मनंदा साधक संग नाई ताप साधक संग तरे सा बाप आपे जाने सार बढ़ाई नानक साधु प्रभु बने आई साधक संग ना कब हूं तावै साधक संग सरा सुख पावै सा संग बसत को चर लह साधु के संग जर सह साधक संग बसे थान उच्चै साधु संग मैल पहुंचै सारग संग दृढ़ सब धर्मो सर संग केवल पार ब्रह्मो सर संग पाए नाम निदान नानक साधु कह कुरबान सर संग सब कुल उधार है सा संग साजन मित कुटम निस्तार है साधु के संग सोतन पाव है जिस तंते सब को बरसाव है सार संग धर्म राय करे सेवा सारग संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप लायनो सा संग अमृत गुण गायनो सारग संग सर्व थान गामो नानक साधु के संग सफल जन्म साधक संग नहीं किश काल दर्शन पेड़ तो निहाल साधक संग कलुक्त हराय साधक संग नरक पर हराय साधक संग इयाउआ सुहेला सा संग बिशर तर मेला जो शह सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रद बसै नानक उदरे साध सुन रसै साधक संग सुन वरनाउ साधक संग हर के गुण गाउ साधक संग न मन ते बिसरै सा संग सरपण निस्तरै साधक संग लगे पर मीठा साधु के संग कट कट डीठा सा संग पै आज्ञाकारी सा संगत पई अमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध

दुख परम्पो जाय स्वयं मानव कीटे कृष्ति सब जान देवन को कब कुआन जिसका दिया रहे गाय बण तिस न लागे आए मारे राखे कुआ मानु के सुनाई हाथ जिसका हुकुम सुखोय तिसका नाम रखंड प्रोय सिमर सिमर सिमर प्रसोय नानक न लागे गोय उस तो मन में कर निंकार कर मन मेरे सद व्यवहार।

बारंबार बार पवज पिए पिय मृत मंत्र पिय नाम रतंजन कुन उपाय तिस्के शव नहीं दिष्टाय तिस्के नहीं दिष्टाय नाम तन नाम रूप रंग नाम सुकर नाम का संग नाम राज जन त्रिवता ने मन तन नाम में नाम सुमाने उठ बैठ सोत नाम कहु नानक जन के सदकाम बोलो जब जय बाधे नाथ प्रभु ने जन की नी दाद करै भगत आ तुम कह जाए प्रभु ने सोरे सुमाए जो हुआ हो सो जाने प्रभु अपने को कुशान तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह न जान वाट पर प्रभु सह जुरे कहु नानक से जन पूरे मन मेरे तिन की ओढ़ लै मन तन अपना तिन जांदे जिन जन प्रभु प्रभु छाता सो जन सर्व तो का दाता तिसकी सरण सर्व सुख पावे तिसके दर्शा पाव मिटावे

सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक गुण नाम सुख मणि दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते ऊचता की शोभा बनी नानक गुण नाम सुख मणि। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मन परताख गुरु निस्तारे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। निमख निमक तुम्हें प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे। निमख निमक तुम्हें प्रतपालो हम बारक तुमरे तारे।